राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास।

तेरा अंत न पारा वरिया, राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा, सब त्यावह है सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना।

जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब

नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो घट घट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन।

कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तनिक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वस कैन कोई। एक बार जिन तुम्हें

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तुज जप भए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याही, सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई।

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु वेद कह हम एक न जान्यो। श्री स्पान

0: दास ने माना जा चिक बन के दर तेरे ते आया, दर तेरे ते आया।
1: मस्त हो करे जोदड़ी, मस्त मग हो करा जोदड़ी, मिल जाए माना।

मात पिता हम बारिकते तुमरी कृपा में, कोई न जाने तुमरा अंत उचेते। सगल सुमगरी तुमरा सूत्र तारी, तुम ते हो एसो तुमरी गात मेत तुम ही जानी। नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। प्रिय अंगद गुरु ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई निस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नि दयावै ताई, सब थाई हुए सहाय।

0: नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो,
1: नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए
0: हो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

तैता हजरत पायो मान सेविया गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान।

अम्य दुष्ट शुभ करे करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर न

0: चरण पसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, सो को टल गुर सेविए, एनस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए।
1: गुरु नानक निकट बसै बनवारी, तिन लैना थाप जोत जग थारी, लैना पंथ धर्म का किया, अमरदास पले को दिया, तिन श्री रामदास सोडी तीर्थ प्यो, हर का नाम अखै निध अप्यो, अप्यो हर नाम अखै निध चो जुग, गुर सेवा कर फल लयं, बंदे जो चरण शरण सुख पावे, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण परणं, सतगुर गुर सेवा।

नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र नमो सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सिद्धा बुद्ध दा बृद करता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं।

0: भुजंग पर यात छंदे गाते बादे आनंदी स्वरूपे नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाथे
1: नमस्तुंग अगंजे नमस्तुंग पंजे
0: नमस्तुंग काले नमस्तुंग।

चर प्रचन द्वैपर साधन वृत कर्म अनवृत कर्म अचल राज्य अटल सच सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं देवं सर्वं पेवं रुआल जन त्वय प्रसाद आद रूप नाथ मूर्त जोन पुरख पार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल नाम

परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश अंग रागना रंग

मत बार शांत वह प्रसाद गुनगन उदार महिमा पार अनुपो प्रकाश निज ननास राजान राज बानान बान इंद्रान इंद्र बालान बाल अनपू अनपूत

0: नामे अकामे भुजंग पर्यात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चाचरी छंद ना सतराय ना मित्राय ना परमंग ना पितराय ना चित्राय ना मित्राय परे है पवित्राय
1: भगवती चंद तुम्हें प्रसाद करते

जमाल है। हरि फुसिकन है, हिरा सुफिकन है, अगन जुगनीम है, रजा एक रहीम है, कि नरकन प्रणास है, बहिस्सुल निवास है, तमाम तमीज है, समस्तुल अजीज है, आदेशुल अलेख है, अमेशुल अपेख है, करीमुल कमाल है, कि जुर्रत जमाल है, कि अजब स्वरूप

सर्वासे हैं सर्वनासे हैं सर्वेश्वर हैं जगदेश्वर हैं परते पर है करुणा कर हैं अकृता अकृत है अमृता अमृत है।

0: काल पाए शिव जी अवसरा।
1: काल पाए कर विजन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।
0: जवन काल जो की शिव की हो, वेद राज में पहुँचोति हो।
1: जवन का सब लोक संवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।
0: जवन का सब जग बनायो, देव देश बचायो।
1: आदान्त के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा।
0: नमस्कार तुसी को हमारी, सुगो बजाज नाप सवारी।
1: शिव रन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह पद कियो।
0: घट घट के अंदर ही जाने, पले बड़े की पेर पिछाने।
1: चीटी ते कुंच रस तूला, सब पर कृपा दिश कर भूला।
0: संतन दुख पायड़ की, सुख पाए सरंग के सुखी।
1: एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की।

0: संतो शब्द तरो पे आरो साचा ना मेरा डारो।
1: वाजे पन सबदित कर सब आगे सबद वाजे कला चित कर तारिया।
0: पांच दुद तुद वस कीते काल कंटक मारिया।
1: तुर करम पाया तुजिन को से नाम हर के लागे।
0: कहे नानक तैस खोआ तित कर अनहद वाजे।
1: साची लिवे बिन दे निमानी लिवे बाजो क्या करे वेचारिया।
0: तुद वाज सनत कोए नाही कृपा कर बनवारिया।
1: एस नौहर थाओ नाही सबद लाग सवारिया।
0: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे वेचारिया।
1: अनन अनन सबको कहे अनन गुरु ते जानिया।
0: जानिया अनन सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
1: कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया।
0: अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया।
1: कहे नानक इह नंद है अनंद गुरु ते जानिया।
0: बाबा जिस तुदे सोई जन पावे।
1: पावे ता सोजन दे जिसनु होर क्या करे वेचारिया।
0: इक परम कुले फिरे गैर सिक नाम लाग सवारिया।
1: गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाणा पावे।
0: कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे।
1: आवो संत प्यारियो कथ की करे कहानी।
0: करे कहानी कथ केरी कित द्वारे पाईए।
1: तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाईए।
0: हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी।
1: कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी।
0: हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया।
1: चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया।
0: हे माया मोहनी जिन एत परम पुलाया।
1: माया त मोहनी तिने कीती जिंठ गोली पाया।
0: कुर्बान कीता तिसे मिठो जिन मोह मिठा लाया।
1: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया।
0: हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। एहो कुटुंब तुझे देखदा चले नाही तेरे नाले।
1: तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाईए।
0: ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछताईए।
1: सतगुरु का उपदेश
2: तू होवे तेरे नाले।
0: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
2: अगम गोचरा तेरा अंत न पाया।
0: अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू सब जाने।
2: जी जन सब खेल तेरा क्या को आको खाने।
0: आखे ता वेखे सब तू है जिन जग तो पाया।
2: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया।
0: सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
2: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
0: जी जंत सब तू दो पाए इक वेख परसन आया।

0: कहे नानक जी मंदिर मल सदार है गुरु नानक
1: जे को सिख गुरु से ती सन्मुख
0: होवे ता सन्मुख सिख कोई जी और है गुरु नानक
1: के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले
0: आप सब सदार है प्रणय गुरु बिन वर न जाने कोई
1: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
0: जे को गुरु ते विमुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे अनेक जूनी परमावै बिन सतगुर मुक्त न पाए
1: फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुर शब्द सुनाए
0: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न

0: हुकुम बरदाए आप वेखे गुरमुख से बुझाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे कस्यो लिव लाए
1: नानक आप करता आपे हुकम बुझाए
0: सिमरत शास्त्र पुन

रागिक संग पंच बिरंगन संग अलापै आठो नंदन प्रथम राग पैरो वैकर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैरवी बिलावली पुन्याकी गावै बंगली पुण्य सलेखी की पई बारी पैरों की पांचो नारी पंचम हरख दिसाग सुनावै बंगाल मद माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलापै है संग रागनी पांचो थापै है गौंड करियर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनालसरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चांड कौशक उबारा खौखट ओ पौरानंद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुने आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस एहिरी लै भर जा संग लाई पंचो अर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बान ओ आहि बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कही सवारी पुन्याई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कहीं अलाप का मोदी ओ गुजरी संग दीपक की थाप कालंका कुंतल ओ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा ओ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना शामिल श्री राग वह गावह पांचो संग बरंगन लावह बैरारी करनाटी तरी गवरी गावह आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खस्तम मेघ राग वह गावै है पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी उच्चै सुरसु हो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा धर गज धर केदारा जबली धर नट

चा भगवंत सगल समग्री तुमरे तुमरी गात मित तुम ही जान नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिरंगद गुर ते अमरदास सुरामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरे आए घर नौ नि दयावै ताई सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइया चरखियां ते चढ़े आर्या नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइया चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा रखा वाहिगुरु ही अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दी दान ते सेवा संभाल

0: सब सुनो लोग सुमायस घूम रही है जिन्हें चो आप आया जिन्हें सचो सच बुझाया जिन्हें सचो सच बुझाया
1: आशा महला चौथा

कोई नाउ न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौने दयावै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया। वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देखिन डिठ कीता। तिनां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दित्ते बन बन कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैद। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान। दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानी वा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरखा। आपणे पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे। जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दी दान ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे तान न्योटियां दी ओर सची पताप वाहिगुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शब्द चौंकी आसा जी दी वार दी भोग जी की अरदास। बारह छके आसा जी दी वार दे संपूर्ण कीते सतगुरु जीओ। आप जी दे हजूर छे पौड़ियां आनंद साहब जी दे पाठ जी की अरदास। भुल चुक माफ करनी अगे तो सुध ते स्पष्ट गुरबाणी। पढ़न विचारन की दात बख्शनी। दाराई संगत नू दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा। नाम दियां दातां बख्शिश करनिया सतगुरु जी। कड़ा प्रसाद दी देख सज के आदरा दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शनी करो किरपा। पावन हुक्म बख्शिश करके संगतां नू निहाल करो सही प्यारे मेल। जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ।